0: जो देते हैं वही पाते हैं। अंग्रेजी में आपने कई बार सुना होगा, यू रीप व्हाट यू सो और व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें सिखाता है कि हमारे द्वारा दिए गए विचार, भावनाएं और कर्म ही हमें वापस मिलते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सकारात्मकता और प्रेम दिखाते हैं तो हमें भी वही वापस मिलता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारे विचार और कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं।
1: नमस्कार, सुप्रभात, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर।

केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, आज आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी आपकी रेडियो साथी गिचिक कनिक के साथ। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। आज सन 2024 की सितंबर महीने की 1 तारीख है और दिन है मंगलवार। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हसीन दिन की शुरुआत करते हैं अरुण एफएम के साथ, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजंग तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अनेकों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और दोस्तों, इस शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन बहुत ही शुभ हो, आइए एक नजर डालते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा से।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। 6:05 पर प्रसारित होगा अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत।

गालो बोली में समाचार आप सुन पाएंगे 6:40 पर, 6:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे, 7:10 पर प्रसारित होगा आपातानी बोली में समाचार।

कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट आप सुन पाएंगे 7:15 पर। 7:35 पर आप सुन पाएंगे तागिन बोली में समाचार। 7:40 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सदाबहार।

8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी शिलांग केंद्र से नोटिस न्यूज। कार्यक्रम हेलो ईटानगर प्रसारित होगा 8:40 पर। 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। 9:05 पर प्रसारित होगा अंग्रेजी में समाचार। कार्यक्रम फिल्मी गपशप आप सुन पाएंगे 9:10 पर। 10 बजे आप एक बार फिर से सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड प्रसारित होगा 10:10 पर। 11 बजे आप एक बार फिर से सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो दोस्तों, ये थी हमारी इस सफर में पेश होने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें और बने रहे अरुण FM 103.1 MHz के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं भक्ति गीत।